कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।

तुम्हारी तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

आ बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: कर ले। ये हंजुआ दी धार आज चले चले के कर गया ठार, तेरा प्यार माही वे टूट गए तार तार तार।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

मेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यकायकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा।

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: कौन कोई कैसे महफूज है मेरा सवाल किसी का उरूज
1: सर बेअसर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ऐ खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर हर सर बेअसर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ऐ खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर।

0: अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियाँ फेंकती है।
1: पेंट चोटियाँ चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितड़ बहनू रेला आन गिया हुण नी जज जमानत दिंदा।

समाने को जलने दो बदले की आग में, उसको भी मरने दो, जलने दो जलने दो, जमाने को जलने दो बदले की आग में, उसको भी मरने दो।

ज्यादा ना सुना कर उनके, तू ज्यादा ना सुना कर उनके, बस अपने ही किया कर मन की, बस अपने ही किया कर मन की। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें फिर तू।

0: के लिए खुदा भी टाल देगा, जब होगी बात बेवफाई की जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।
1: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

देती गाली बस माई प्यार देगी मदद के लिए पुकार खुशियों के लिए गुहार देखी रिश्तों में दरार यारों से यार मार देखी मैंने बेचैन अपनी सांस मरने के लिए आज देखी एक मंजिल देखी फिर तलाश देगी सपनों के बिना जिंदा।

0: वो नफरत में तो लेना कोई
1: हिप हॉप बनी लाइफ कपड़े दिए खाना दिया फैंस के रूप में खजाना जीने के लिए जमाना दिया परायों ने प्यार अपनों ने ताना दिया मैं हिप हॉप नहीं कईयों ने दावा किया मैंने हर तरीके का गाना दिया नास के लेवल के साथ गाना किया टेल मी कितने रैपरों ने जो गाया जिया बता दो कितने रैपरों ने जो गाया जिया

न दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: your home for community. CJMR 1320.
1: जब तू साथ नहीं होती, तड़पता मेरा दिल है। मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।